ताली ताक धुम ताक ताली ताक धुम ताक धाला आम ताक धुम ताक ताली के नेतू ताक नाक ताक धुम ताक नाक नाक धुम ताक नाक नाक धुम ताक नाक नाक जम ताली ता जग ताली ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के ताक धुम ताली ता जग ताली ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के जम ताली

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूड योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

तुमसे मिलके हाँ तुमसे मिलके फिल्म परिंदा के गीत और गीत के गाने वाले आशा जी एंड सुरेश वड़कर और ये उजाला रेडियो है और सुनने वालों इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए वेबसाइट आप देखें जरूर उजाला.nl। अब लता जी हिस्सा ले रही है। पुरानी फिल्म अमन से निकाला हुआ गीत

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Het scheepvaartverkeer door de staat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Democraat Graham Platner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Rosie! Rosie! पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
3: क्या?
2: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
3: वो होने से क्या होता है?
2: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी।
3: मुझे भी नहीं आती।
2: मुझे भूख नहीं लगती थी।
3: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
2: दिल में दर्द होता था।
3: दर्द तो मुझे भी रहता है।
2: बस यानी कि तू गई काम से।

0: एक ही दवा है।
1: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
2: मारिया!
0: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: By God, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको।

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar. उजाला रेडियो रातों दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगेगा विल जय बरिखी स्टूडियो नार ओंस स्टूडियो हाँ विल जय बरिखी स्टूडियो नार ओंस स्टूडियो दन कम दर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रातों दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

Jella Radio. Mijn Lloyd Mahabir. और इसी के साथ सुनने वालों, हम यहीं से प्रोग्राम को आरंभ कर रहे हैं लेकर आप लोग की फरमाइश। आज है बृहस्पतिवार, वंदाग दोनों दाग 9 जुलाई है और आज अलमीर के रहने वाली दुल्हन रानी शिवानी रतन एंड अलमीर के रहने वाले दुल्हन राजा गिरेश ठाकुर, इन दोनों की विवाह संस्कार आने वाले शनिचर 11 तारीख जुलाई को होने वाला है। इस खुशी के मौके पर अभी थोड़ी देर में आप लोग की फरमाइश लाया जाएगा उजाला रेडियो पर। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है शिवानी रतन एंड गिरेश ठाकुर, तुम दोनों के लिए यह भी प्रार्थना किया जा रहा है कि जोड़ी को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ में रहे।

अब से लेकर लगातार 12 बजे तक हम आपके लिए प्रोग्राम में फरमाइश लाने वाले हैं और भी परिवार रतन के लिए फरमाइश लाया जाएगा उजाला रेडियो पर। तो सबसे पहला फरमाइश की तरफ हम बढ़ते हैं सुन वालों, और भी पेश किया जा रहा है खासकर आज जबकि बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार 9 तारीख जुलाई है। तो आने वाले सनीचर 11 तारीख जुलाई को अलमीर की रहने वाली दुल्हन रानी शिवानी रतन एंड अलमीर के रहने वाला गिरेश ठाकुर के विवाह संस्कार होने वाले हैं। इस खुशी के मौके पर अलमीर के रहने वाली मामा सोनी सुखू प्यारी प्यारी लाडली बेटी के वास्ते बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और आशीर्वाद के साथ ये नगमा को फरमाइश करें।

आने वाली शनिचर 11 जुलाई को बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संस्कार होने वाला है। अलमेर के रहने वाले हैं दुल्हन रानी शिवानी रतन एंड अलमेर के रहने वाले दूल्हा राजा धीरेज ठाकुर के साथ इस विवाह संस्कार के खुशी के मौके पर लिफ मामा सोनी सुकू प्यारी प्यारी लाडली बेटी के वास्ते बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ ये नमक को फरमाइश के आशीर्वाद के साथ दुल्हन रानी शिवानी रतन एंड दूल्हा राजा गिरेश ठाकुर के विवाह संस्कार आने वाले शनिचर 11 तारीख जुलाई को बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। खुशी के मौके पर अलमेर से छोटा भाई डेमियन रतन बहन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई और शुभकामना के साथ पेश करें।

आने वाले शनिचर 11 तारीख जुलाई को अलमेर की रहने वाली शिवानी रतन एंड अलमेर के रहने वाला गिरेश ठाकुर के विवाह संस्कार होने वाले हैं। खुशी के मौके पर अलमेर से छोटा भाई डेमियन रतन प्यारी प्यारी बहना के लिए बड़े प्यार दुलार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश किए। शिवानी रतन एंड गिरेश ठाकुर के विवाह संस्कार शनिचर को होने वाला है। खुशी के मौके पर हेनरिक ईदो आम्बाह के रहने वाले मौसा रजेश और मौसी रहीला राम दुलारी तिवारी प्यारी प्यारी बेटी के वास्ते बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत आशीर्वाद के साथ पेश करें।

0: रहने वाली दुल्हन रानी शिवानी रतन एंड दूल्हे राजा धीरेश ठाकुर के विवाह संस्कार आनस्तांदे जाटरदाग 11 तारीख जुलाई को होने वाले खुशी के मौके पर हेंड्रिक ईदो आम्बाख के रहने वाले हैं नामस माउसा रजेश एंड नामस माउसी रहीला राम दुलारी तिवारी बेटी के वास्ते बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत आशीर्वाद के साथ पेश की गए
1: चल हट
2: सबकी बारातें आई
0: बारात तो आने वाले हैं 11 तारीख जुलाई को शिवानी रतन और धीरेश ठाकुर के विवाह संस्कार जबकि होने वाला है खुशी के मौके पर ब्यूटी क्वीन शिवानी अपने हैंडसम साथ दूल्हे राजा धीरेश के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश करें

दुल्हन रानी शिवानी रतन एंड अलमीर के रहने वाला दुल्हन राजा गिरीश ठाकुर के विवाह संस्कार शनिवार 11 तारीख जुलाई को होने वाला है। इस खुशी के मौके पर दुल्हन रानी शिवानी दुल्हन राजा गिरीश के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश किए। शिवानी रतन एंड गिरीश ठाकुर के विवाह संस्कार आने वाले शनिवार 7-10-11 तारीख जुलाई को होने वाले हैं। खुशी के मौके पर देन हाग के रहने वाले मामा नरेंद्र सुखू एंड मामी लीला सुखू खेमाई प्यारी प्यारी बिटिया रानी के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत आशीर्वाद के साथ पेश कर रहे हैं।

0: आने वाले शनिचर 11 तारीख जुलाई को बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संस्कार होने वाला है। अमीर के रहने वाली शिवानी रतन और भी अमीर के रहने वाले दुलराजा गिरेश ठाकुर के साथ इस विवाह संस्कार के शुभ अवसर पर दरहा के रहने वाले मामा नरेंद्र सुक्कू और मामी लीला सुक्कू खेमाई बिटिया रानी के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ आशीर्वाद के साथ नाभा को फरमाइश के
1: तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा।
0: शिवानी रतन और धीरेश ठाकुर की विवाह संस्कार शनिचर 11 तारीख जुलाई को होने वाला है। खुशी के मौके पर दो भाइयों हैं देनहाक के रहने वाले प्रशांत और विनेश सुक्कू। बहन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

आने वाली शनिचर 11 तारीख जुलाई को आमेर के रहने वाली दुल्हन रानी शिवानी रतन एंड आमेर के रहने वाला दूल्हे राजा गिरीश ठाकुर के विवाह संस्कार होने वाला है। खुशी की मौके पर देनहाग से दो भाइयों प्रशांत और विनय सुखू बहन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नफा को फरमाइश के शिवानी रतन एंड गिरीश ठाकुर की विवाह संस्कार शनिचर 11 तारीख जुलाई को होने वाले। खुशी के मौके पर आमेर से मामा सोनी सुखू बिटिया रानी के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और ढेर सारा आशीर्वाद के साथ पेश करेंगे।

अलमेर के रहने वाले हैं दुल्हन रानी शिवानी रतन एंड अलमेर के रहने वाला गिरीश ठाकुर के विवाह संस्कार 11 तारीख जुलाई को हमारे खुशी के मौके पर लीव मामा प्यारी प्यारी माँ सोनी सुखू बिटिया रानी के लिए बड़े प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश किए शिवानी रतन एंड गिरीश ठाकुर की विवाह संस्कार 11 तारीख जुलाई को होने वाले खुशी के मौके पर और मेरे से छोटा भैया डेमियन रतन बहन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

अलमीर की रहने वाली दुल्हन रानी शिवानी रतन अलमीर के रहने वाला धीरेज ठाकुर, इन दोनों के विवाह संस्कार आने वाले शनिचर को होने वाले हैं और इस खुशी के मौके पर नाम से डेमियन रतन फॉर बहन के लिए छोटा भैया ने बड़ी बहन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और प्यार दुलार के साथ फरमाइश के उजाला रेडियो है सुन वालों, उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar €100 op UR Ujala Radio.

परिवार रतन थोड़ी देर के लिए फरमाइश को हम रोक देते हैं। अभी थोड़ी देर में और भी फरमाइशें नाद कमर्शियल ब्रेक जारी किया जाएगा। जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते जाना सुनने वालों, ये है उजाला रेडियो आपके हर एक कामकाज के लिए। चेक उजाला पे इंटरनेट वैसे हर एक कामकाज के लिए स्टूडियो ईमेल नार info@ujalapindanao। परिवार रतन जुमतेन और भी फरमाइशें उजाला रेडियो के जरिए जारी किया जाएगा। बेशक सुंदर है ना।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

आने वाले शनिचर 11 तारीख जुलाई को आलमीर के रहने वाले दुल्हन रानी शिवानी रतन एंड दूल्हे राजा धीरेज ठाकुर के विवाह संस्कार होने वाले हैं। इस खुशी के मौके पर दुल्हन रानी शिवानी अपनी प्यारी प्यारी माँ लिफा मामा सोनी सुखो के लिए बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ नाहमा को फरमाइश किया। शिवानी रतन एंड धीरेज ठाकुर के विवाह संस्कार आमस्तान 11 तारीख जुलाई को बड़ी धूमधाम के साथ होने वाले हैं। खुशी के मौके पर हेंद्रक ईदो आंबा के रहने वाले मौसा रजेश एंड मौसी रहीला राम दुलारी तिवारी प्यारी प्यारी बिटिया रानी के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और आशीर्वाद के साथ ये नहमा को फरमाइश करें हैं।

Giovanni Rosen en Gerees Takur Kevi Vasas Garan Valisin Chirgera Tari Julaik en Wallahi Hushik Mokaper. Hendrik Udo Ambachir en Wallahi Mausa Rajes en Mausi Rahila Ramdulari Tewari. Pierre Pierre Beti Givase, Buddy Pier, Mahabad Badhai Shubkamna, Aura Shirbat Kisat Peshke. शिवानी रतन और गिरीश ठाकुर के विवाह संस्कार आने वाले शनिचर को होने वाले सूरीनाम पारमारी बहु से मौसी मेवी सुखू प्यारी प्यारी बिटिया रानी के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत आशीर्वाद के साथ पेश करें।

वाले सनीचर 11 तारीख जुलाई को शिवानी रतन और गिरीश ठाकुर के विवाह संस्कार होने वाले हैं। खुशी के मौके पर सुरीनाम पारामारिबो से मौसी मेविस सुखो प्यारी प्यारी बेटी रानी के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ ये नामा को फरमाइश के। शिवानी रतन और गिरीश ठाकुर की विवाह संस्कार आने वाले सनीचर 11 तारीख जुलाई को होने वाले खुशी के मौके पर बहन दुल्हन रानी शिवानी छोटा भैया डेमियन के वास्ते बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

आने वाली शनिचर 11 तारीख जुलाई को अलमीर के रहने वाले हैं दुल्हन रानी शिवानी रतन और दूल्हे राजा गिरीश ठाकुर के विवाह संस्कार होने वाला है। खुशी के मौके पर दुल्हन रानी शिवानी अपने छोटा भैया दीमहीन के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत दुलार के साथ फरमाइश के शिवानी रतन और गिरीश ठाकुर के विवाह संस्कार शनिचर 11 तारीख जुलाई को होने वाला है और इस खुशी के मौके पर मेयर सौरख सूरीनाम मेयर सौरख 50 केती वेख के रहने वाले हैं मौसा भोलू भवानी और मौसी पद्मा भवानी सुखू बिटिया रानी के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत आशीर्वाद के साथ।

शिवानी रतन और गिरीश ठाकुर के विवाह संस्कार शनिचर 11 तारीख जुलाई को होने वाला है। खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के मीर सौरख के रहने वाले मीर सौरख 50 केती के रहने वाले हैं। 50 केती वैख होना चाहिए। मौसा भोलू भवानी और मौसी पद्मा भवानी सुखू बिटिया रानी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई और शुभकामना के साथ फरमाइश के आशीर्वाद के साथ। अलमेर के रहने वाली है शिवानी रतन और अलमेर के रहने वाला गिरीश ठाकुर के विवाह संस्कार आने वाले शनिचर को होने वाले हैं। खुशी के मौके पर भाई रितेश भवानी बहन के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत और दुलार के साथ पेश करें।

आने वाले शनिचर 11 तारीख जुलाई को अलमीर के रहने वाली शिवानी रतन और अलमीर के रहने वाला गिरेश ठाकुर के विवाह संस्कार होने वाले हैं। खुशी के मौके पर भाई रितेश भवानी बहन के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और दुलार के साथ फरमाइश की। आज के लिए आखिरी फरमाइश प्रोग्राम में शिवानी रतन और गिरेश ठाकुर के विवाह संस्कार आने वाले शनिचर को होने वाले हैं। खुशी के मौके पर दुल्हन रानी शिवानी दूल्हे राजा गिरेश के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ पेश करें।

आने वाली शनिचर 11 जुलाई को अलमेरी की रहने वाली दुल्हनानी शिवानी रतन और अलमेरी की रहने वाला धीरेश ठाकुर के भी विवाह संस्कार होने वाला है। खुशी के मौके पर होने वाली दुल्हन रानी, खूबसूरत सी दुल्हन रानी, ब्यूटी क्वीन दुल्हन रानी, ब्यूटी क्वीन शिवानी अपना हैंडसम सा दूल्हे राजा धीरेश के लिए प्यार और मोहब्बत दिल और जान के साथ फरमाइश के प्रोग्राम में।

उजाला रेडियो के जरिए यहाँ तक आज के प्रोग्राम में फरमाइश हमने पेश किए हैं परिवार रतन, बाकी के फरमाइशें उजाला रेडियो के जरिए कल के प्रोग्राम में जरूर आप सुन लेना। हम यही आशा करते हैं शिवानी रतन एंड घेरेश ठाकुर हम यही आशा कर रहे हैं कि जितने से फरमाइश हमने पेश किए जरूर से पसंद आया होगा और कल के प्रोग्राम में बाकी की फरमाइशें जरूर सुन लेना। समस्त परिवार रतन, समस्त परिवार ठाकुर को ये विवाह संस्कार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, परिवार रतन, परिवार ठाकुर।

मिन्नान परिवार ठाकुर को ये विवाह संस्कार बधाई या शुभकामना पेश किया जा रहा है। सुन मालू उजाला रेडियो के जरिए अगर आपको फरमाइश देना है, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, ईमेल का पता है info@ujala.nl। 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ यूआर उजाला रेडियो।

यू आर उजाला रेडियो के जरिए भी थोड़ी देर में ना द कमर्शियल ब्रेक आप सुन लेना उजाला रेडियो के जरिए वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मेद शो और उजाला रेडियो अभी हम आएगा थोड़ी देर में ना द कमर्शियल ब्रेक हम आने वाले हैं जो मतलब उजाला रेडियो कॉफी चाय मेद शो

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से समस्त परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ीफ़नन तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह संदर फान जेल्डरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखाराम भोला की मृत्यु अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अम्स्टरडम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ीफ़नन तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह सांदर फान जेल्डरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखाराम भोला की मृत्यु अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार के शाम में 6:30 से 7:30 तक फ्रेडा खानस्टांड फन हालफ ज़ीफ़न तोत हालफ अख्त उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्दे के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम उस दौरप में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 3:00 ज़ांत्रदख आंस्टांड 3:00 किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम उस दौरप में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-21-15-61-28 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार भोला के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien het, door Zaalgren het. Of ga je trouwen? तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, या किसी का मुंडन संस्कार है, उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं। 15 फरमाइश फोर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl।

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio is leuk, zet hem aan.
3: Ojala Radio पर एक बार फिर आप सभी को स्वागत है और अब शुरू होता है यहीं से यादगार गीतों का सिलसिला.

0: आपका दिल आपका धड़कन उजाला रेडियो।
1: मुकेश जी की आवाज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी आवाज की विशेषता कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा ईमानदार भोला भाला आदमी गा रहा है, और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए। कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

बिनकोर ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुन वालों, तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खा जाए बिनकोर ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से समस्त परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ीफ़न तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह संदर फान जेल्दरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखराम भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ीफ़न तख्त ख़ियार और पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला, बॉयक भोला, श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह सांदर फान जेल्दरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था संजय जोशुआ और सेल्फाना के नाना। अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखराम भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार के शाम में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक फ्रेदखानस्टांद फन हालफ ज़ीफ़न तोत हालफ अख्त उत्फार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम उस दौरप में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 3 बजे जात्रदख आसांद द्री उर किए जाएंगे वेस्खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम उस दौरप में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-21-15-61-28 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार भोला के दुख में शामिल है।

7:17 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और ये है उजाला रेडियो लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनराम से। अब से करीबन 10 बजे तक पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। तो तहदिल से आप सभी को हम स्वागत करते हैं आज इस खूबसूरत दिन जो बीते हैं और खूबसूरत रात भी जो हो रहे हैं। बेहद खुशी है हम कि आप सभी ने चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। तहदिल से स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय सुनने वालों को, रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब से। 3 घंटे ये प्रोग्राम हम सजाएंगे रात्रि में 10 बजे तक विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स और उनके साथ साथ भी कुछ दर्द भरे नगमाएं। और हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों, व्हाट्सएप पर भी आप हमेशा की तरह बातें कर सकते हैं। आप ऐप करें 020-363-0000 और रहे आपके कामकाज जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए तो आप दफ्तर को तार करें या तो मेल करें। आपकी फरमाइश जरूरी खबरें, मौत की खबरें, इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए आप सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे आप तार कर सकते हो दफ्तर को 020-409-0807 या तो 24 घंटे 7 दिन लगातार आप मेल कर सकते हैं अपने कामकाज के लिए info@ujala.nl मेरे प्यारे जिन वालों। तुरंत सेवा में हम आप तक पेश करेंगे नगमा। आज का ओपनिंग सिलेक्शन बड़े अनजान साहब जी का लिखा हुआ और जो गाकर सुनाएंगे किशोर कुमार की जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। पेश करता हूं स्वागतम। और अगर आप खा रहे हो तो स्वादिष्ट भोजन हो, काम पर हो तो दिल लगाकर काम करना, सड़क पर हिस्सा आप ले रहे हैं तो संभाल के, और अगर विदेश से आए हो हमारे स्टेज में तो आपको भी स्वागत हम करते हैं, और हमारे ये देश से आप विदेश गए हैं तो एंजॉय एंजॉय भरपूर एंड नेम ओवरऑल उजाला रेडियो में चमे दिल की आवाज। ओपनिंग सिलेक्शन किशोर कुमार।

जिंदा हूं मैं तेरे लिए और मेरा ये जीवन बस तेरा है, मेरा है जो सब है तेरा, अब क्या मेरा है, मेरी खुशियों की तू है जागीर, नजर आती है जिधर भी देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। लालजी पांडे और इन्हें लोग अनजान साहब जी बुला रहे हैं, बड़े अनजान साहब जी इनके हाथों लिखा हुआ गीत किशोर कुमार ने गीत गाकर सुनाए हैं। आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी फिल्म महान से निकाले हुए। फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये दिल की आवाज लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोहतांग से। फिर एक बार पेश हो रहे हैं, आज 9 जुलाई है साल 2026, बहुत ही खूबसूरत दिन, देखो ना सूरज किस तरह से चमक रहे हैं सुबह से अब तक, और उसी चमक की वजह है कि सभी के चेहरे पर मुस्कान है, सभी खुश हैं, सभी एंजॉय करते हैं, और जिंदगी में ये पल बहुत ही कम मिलता है मेरे प्यारे सुनने वालों एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो हमें दुखों का सामना करना पड़ते हैं, और अगर उसे भी हम दोस्ती कर लें तो ये जिंदगी कितनी आसान हो जाएगा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो तो डर कैसा है ना, अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो डर कैसा, क्योंकि अगर जीत गए तो क्या कहना, और अगर हार गए भी बाजी तो तू जाने तो। Je moet durven in het leven. Wie niet durft, bereikt niks. मेरे प्यारे सुनोल, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, एक डर भरा गीत बाप का लिखा हुआ किशोर कुमार ने गाकर सुनाए। अब बेटा जो एक सरताज बादशाह है समीर अंजान, इनका लिखा हुआ गीत कनाल गांजा वाला जी की आवाज, ये नगमा। आइलिन आइटालम डंकीवेल, आइलिन जी आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

तेरे होतों पे सजा दूंगा हंसी, तेरी राहों में बिछा दूंगा खुशी। तुम मुझे अपना मानती होगर यूं खफा होके ना झुका ये नजर। मुश्किलें अपनी मजबूरी, हाँ दे दो मुझे सारी बेनूरी। परेशानियां भी दो, हैरानियां भी दो, सब कुछ दे दो। बेबसी दर्द का आलम तुम मुझे दे दो, अपने सब ये गम। खामोशियां भी दो, तन्हाइयां भी दो, बेचैनियां भी दो, दे दो ना। समीर का लिखा हुआ ये दर्द भरा गीत, लेकिन आपने देखा कि इस दर्द भरे गीत में कितनी भी प्यार है, और कुणाल गांजा वाला की आवाज तो जादू है। बाबुल का नगमा आप तक हमने पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और प्यार में ऐसा होता है मेरे प्यारे सुनने वालों, प्यार अगर हो जाए तो आप ये कहेंगे कि एक्सपर्ट ना बातें, कि मुझे नहीं पता ये प्यार क्या होता है। मुझे नहीं पता ये प्यार क्या होता है, मुझे तो तुझे देखने तेरी सूरत, तेरा ये गोरा बदन, तेरी ये जुल्फे, तेरी मुस्कान, मुझे वो देखना पसंद है। और अगर वो प्यार है, या तो प्यार है, कौन जाने। अलमेर में सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरे प्यारे सुनने वालों, टूनी इसरी और अलमेर बैत में भी सुन रहे हैं प्रोग्राम राज और आरती नंदन। थैंक यू लिवेल फॉर यू लिबरेशन, एंजॉय यू आर, एंजॉय दिल की आवाज। रजिंद्र कृष्ण जी जो एक महान कवि है मेरे प्यारे सुनने वालों, इनके हाथों से ना जाने कितनी खूबसूरत नगमाएं लिखा गया है, और यकीनन ये जो गीत हम पेश करने जाएंगे एक लव सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है, प्यार भरा नगमा जो आप पसंद करेंगे, क्योंकि ये नगमा एक अमर संगीत है। द लेजेंड पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें। तेरे सिवाना किसी का बनूंगा,

आएंगे मौसम, जाएंगे मौसम, हमको तो सदा साथ पाएंगे मौसम। आवाज देखे जो रोके जमाना, जमाने को या समाने की बातों में हर किस नाना, क्योंकि तेरा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है, ये वादा रहा दिलरुबा। रोमांटिक अल्फाज मेरे प्यारे सुनने वालों, राजेंद्र कृष्ण जी के कलम से लिखा गया और अपनी खूबसूरत आवाजों में द लेजेंड सुरों का बादशाह रफी साहब जी की आवाज विद नाइटिंगेल आशा जी। फिल्म का नाम प्रोफेसर प्यारेलाल। एक फीलिंग के बाद मैं आप सभी से कहूं, कोई अगर तुमसे इतना प्यार करे तो कितना अच्छा लगता है जब वो कहता है कि अरे ओए जरा सुनो तो प्लीज, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तू अपना ख्याल रखना, तू अपना ख्याल रखा कर। हाउ स्वीट इज दैट। दर्द है कि तुम्हें ना कुछ हो जाए, और अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो उनको क्या हो जाएगा, वो भी एक तरह का प्यार है ना। शहीद क्वादरी जी का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, एक रोमांटिक, वैसे तो ये गीत पिक्चराइज किया गया था पानी के मौसम में, जहां तक मेरा ख्याल है, और मुतफ़र्रिज़ोर बहुत दिन हो गए हैं फिल्म को देखना, लेकिन गीत बहुत खूबसूरत है जो क्वादरी साहब जी ने लिखा है, सईद क्वादरी जी, अटीफ असलम की आवाज पर, कि वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, ठीक ऐसी रातें वो बरसाते और वो भीगी भीगी यादें। मिके जी दनाख दंग के वाल आपके अब के लिए, और हम धन्यवाद भी कहना चाहेंगे अम सदाम का सत्याजी दंग के वाल आपके अब के लिए।

और अपनी खूबसूरत आवाज में अतीफ असलम जी ने गीत को गाकर सुनाया है। फिल्म का नाम जहर, मेरे प्यारे सिनेमा जहर। लोग आजकल बहुत कम बातें करने लगे हैं एक दूसरे से, तार भी नहीं करते हैं ज्यादा, व्हाट्सएप करते हैं मैसेज। कहते हैं कि बातें करना उसके लिए हम स्टेमिंग में ना बाती, मूड में नहीं हूं, टाइम मेरे पास नहीं है। फंडार्स ने लबरिख्त, लेकिन बात करने के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों टाइम या मूड की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आपको दिल होना चाहिए। अगर दिल हो तो आप बात कर सकते हैं। बात करने के लिए दिल होना चाहिए, टाइम और मूड नहीं। सिंपल सी बात है। रोतनम का रोहनी कल्लू जी आप भी चुन किए हुए हैं उजाला रेडियो, सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल की आवाज, एंजॉय। महेंद्र दलवी जी का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, एक रोमांटिक सॉन्ग उदित नारायण की आवाज पेश करता हूं। हियर ऑन यू आर, सुन ले मेरी लैला मेरा अफसाना, क्योंकि तूने तो बनाया है मुझको दीवाना, शम्मा तू और मैं परवाना।

वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, ठीक ऐसी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें। खूबसूरत नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, साहित्य कादरी जी का लिखा हुआ

ये पल चंचल खोना देना कहीं ओ दीवाने, रोज रोज आते नहीं ऐसे मौके दिल को लुभाने, साथी भी है जाम भी है रंगो भरी ये शाम भी है, देखा मौका निकल ना जाए। प्यार भरा गीत मकार दाग है खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनो वालों, प्यार में या ये है दाखेंग नोड़। ये था नाइटिंगेल आशा जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार, रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ गीत फ्रॉम द मूवी काली चरण। मेरे प्यारे सुनो वालों, 8:15 का वक्त है, मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, और लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रोटरडम से दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। और व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूं मफरोन मनेर बिहारी जी है अदब्रेडा, और सुशीला चंद्रिका सिंह जी भी है अमसलफिंग। बेहद खुशी है हम कि आप ने चून किए हुए हैं ऐप करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल। द ग्रेट इंडिवर साहब जी, इनका लिखा हुआ गीत मैं पेश करने जा रहा हूं, एक रोमांटिक सॉन्ग है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और एक नगमा जो स्वर्गीय कंचन जी गाकर सुनाएंगे टुगेदर विथ सुरेश वाडकर, साथ ही मेरे तुम जो बने सारा जहां मेरे साथ आ गया, क्या बात है।

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनोला साथी मेरे, तुम जो बने सारा जहां मेरा साथ आ गया। यह ब्यूटीफुल सॉन्ग जैसे मैंने कहा एक रोमांटिक सॉन्ग इंदवर साहब जी का लिखा हुआ और अपने खूबसूरत आवाजों में मिलकर गीत गाए हैं सुरेश वाडकर और स्वर्गीय कंचन जी की आवाजें। फिल्म का नाम साउड इन सास के। For the mensen die meisjes willen versieren of een meisje die een jongen wil versieren. In ieder geval, अगर उनसे देखने में तो अगर उसे आप देखें तो आपका दिल धड़कने लगता है कुछ और तेज, मतलब ये कि उसके लिए आपके दिल में कुछ है। And you will it zeggen, maar तू ना durf करे। तो ये मिस्टर लव जो है डॉक्टर लव का एक दो लाइनें वेट एक नोख फ्रॉम व्रूगर एक हैब इट सेल्फ नहीं गब्रक। लेकिन कहते हैं अगर उसे आप कहें कि कुछ तो बेवफाई है मुझ में, कुछ तो बेवफाई है मुझ में भी जो अब तलक जिंदा हूं तेरे बगैर। दैट इज नॉट मोई, कुछ तो बेवफाई है मुझ में, कुछ तो बेवफाई है मुझ में भी जो अब तक जिंदा हूं मैं तेरे बगैर। अगर लड़की समझे, अगर लड़का समझे तो एकदम इंप्रेस हो जाएंगे, वरना चाहता मिलेंगे ऐसा। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और देखते हैं कौन सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम। सत्या जी आर द एप एंड एक गीत जो मैं देखता हूं जय वर्मा का लिखा हुआ, मेरे प्यारे सुनने वालों जय वर्मा का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं। लगते हो तुम अजनबी पर अजनबी तुम लगते नहीं, जाने कैसा ये एहसास है जब से नजरों की तू पास है। गीत मिलकर गाएंगे बाबुल सुप्रियो और सुनिधि चौहान। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनो, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते चेक www.ujala.net।

लगते हो तुम अजनबी पर अजनबी तुम लगते नहीं। जाने ये कैसा एहसास है जब से नजरों के तू पास है। प्यार भरा नगमा रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनवालो जय वर्मा, इनके कलम से लिखे हुए एक एक खूबसूरत प्यार भरा शब्द मिलकर गीत गाए हैं सुनिधि चौहान और बाबुल सुप्रियो। फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनवालो Proud to be an Indian, proud to be an Indian। आईफी जहांगीर दंकीवल आप भी चून किए हुए हैं दंकीवल फॉर ये एपिया। आईफी जी बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय दिल की आवाज। मेरे प्यारे सुनो, हम ये प्रोग्राम आज सजाएंगे बनाएंगे रात्रि में 10 बजे तक, और मैं आज एक घंटे जल्दी ही आ गया था तो आज एक घंटे जल्दी ही चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको निराश नहीं करेंगे, खूबसूरत नगमाओं के साथ आपका दिल बहलाएंगे, प्यार भरे डर भरे तो जाने तो जिस तरह से प्रोग्राम दिल की आवाज हम हमेशा बनाते हैं, उसी तरह से भी ये प्रोग्राम आज भी उतनी ही प्रेम और प्यार उतनी ही लगन के साथ बनाएंगे आप सभी के लिए। द ग्रेट वर्मा मालिक जी इनका लिखा हुआ गीत, एक डर भरा गीत, द ग्रेट हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज पेश करने जा रहा हूं।

वहदे वफा पे मर मिट जाना, ये है रस्म पुरानी। इश्क मोहब्बत प्यार की कसमें समझो एक कहानी, दिल को अब तुम समझा दो कि गुजरे बीते अफसानों का हर एक नक्श जो है उसे मिटा दो, पिछली तुम याद भुला दो। अगर आगे बढ़ना है तो आपको भुलाना पड़ेगा जितनी बातें हैं जो आपके पिछले जिंदगी, जो आप शायद समझते होंगे आपका बुरा वक्त, उसे मिटाना होगा आगे बढ़ने के लिए। यह था एक डर भरा गीत वर्मा मलिक जी, इनका लिखा हुआ नगमा, डगरेट किशोर कुमार जी की आवाज में। फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनो वालों, मेहंदी।

मेरे प्यारे सुनो, कभी कभी लोग भी ये कहते हैं कि प्यार प्यार यार कोई कुछ नहीं करता, ये प्यार जो है एक धोखा है। एक वेदनी थी, हो सकता है। तो मतलब ये कि जितने लोग भी प्यार करते हैं वो सभी धोखेबाज हैं, क्योंकि धोखेबाजी कर रहे हैं। नहीं, आई डोंट बिलीव सो। अगले गीत मेरे प्यारे सुनो। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग। एक गीत कमाल का नगमा, ये देव खोली जी, बहुत कमाल के नगमाई इन्होंने लिखा मेरे प्यारे सुनो देव खोली जी। और देखो ना ये नगमा जो शान और चित्रा जी मिलकर गाएंगे, की कसम है कसम से, हमको सिर्फ प्यार है तुम ही से। ब्यूटीफुल सॉन्ग हियर ऑन यू आर, दिल की आवाज में। एंजॉय।

लोग कहते हैं पागल, हूं मैं भी ये भी मैं ना जानू, लेकिन दिल लुटाया है मैंने, मैं किसी की नहीं मानूंगा। अपना चैन देकर ले लिया है सारी बेचैनियां।

किए हैं। इतना प्यार कोई किसी के साथ किसी को कर सकता है? वो पूछते हैं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो वो कहता है सबसे ज्यादा मुझ पे भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। बाप रे दादा, इस तरह लोग इश्क में ना सिर्फ अपना दिल, अपने पूरे होश हवास खो देते हैं इश्क में। इस है एक चीज जो आपको ये करवा देते हैं। फिलहाल तो खूबसूरत आवाजों से मिलकर गीत गाए हैं खूबसूरत, देवखोली जी का लिखा हुआ, चित्रा जी और शान, फिल्म का नाम मैं प्रेम की दीवानी हूं। नजर आ रहा है साफ ये तो एकदम मैजिक हो गया कि किसी की आंखों से उनकी आंखों में आपने देखा, सीधे आंखों से जाकर दिल में, कि उनके दिल में तुम ही तुम हो बसे। बाप रे दादा, इस तरह के नगमाए समीर जी लिख सकते हैं। और गाने वाले हैं द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अलका याग्निक। पेश करता हूं हीरो ऑन यू आर।

यह ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनवालो। मैं तो गीत में गुम हो गया था, दिस लाइफ तू जाने तो। इस तरह से नगमाएं कभी कभी मैं सुन ले लेता हूं तो मैं डूब जाता हूं गीतों के शब्दों में। एनत म्यूजिक नतुरलक, और उस गीत का जो शब्द होते हैं सभी मेरे दिमाग में। दैट इक सोम्स हेलमाल द वर्ल्ड फरगेट, मदर बिन इक। ये था खूबसूरत नगमा द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण और अलका याग्निक जो मिलकर गाए हैं ये रोमांटिक सॉन्ग समीर का लिखा हुआ फ्रॉम द मूवी ऐतराज। मेरे प्यारे सुनो, अब तो वक्त आ गया है कि इस घंटे का आखिरी गीत मैं पेश करूं। उस आखिरी गीत के बाद ब्रेक होंगे, वो भी 9 बजे का। 9 बजे के बाद एक घंटे और आपका सेवा हम करेंगे। Want ik ben er vanavond tot 10 uur. Live en direct uit de studio Rotterdam. Agle gi jo gaenge Anwar Hussain, The Great Anand Bakshi ji, inka likha hua ek geet ye gaakar sunayenge. Aur ek filmi qawwali hai, लेकिन गीत बहुत खूबसूरत है मेरे प्यारे सुनने वालों। इनके जो शब्द हैं और जिस अंदाज से अनवर जी गीत गाए हैं, लाजवाब बेमिसाल। ये नगमा को निकाल रहा हूं फिल्म जिसका नाम है ये इश्क नहीं आसान। इस गीत के बाद ब्रेक मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय।

मोहब्बत की पहली एक नजर में तूने मुझको तो पा लिया था ऐ सनम, जो मैं कभी भी कह ना सकी मेरे दिल ने वो कह दिया कि हमने तुम्हें तार किया है ये बताने के लिए मुझे तुमसे प्यार है। I just called to say I love you। समीर का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की खूबसूरत आवाजों में गीत आप तक हमने पेश किया है। फिल्म का नाम जान की कसम। 12 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, वो भी 9 बजकर। ये है दिल की आवाज लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोहतनाम से जो पेश हो रहे हैं। मैं हूं आपका यार रतन राम दुलारे पांडे और सेवा में मिस्टर भारत मनोज कुमार, इनका लिखा हुआ गीत भूपेंद्र की आवाज में आप सुनेंगे ये नगमा।

हाँ हम होश में थे, तुमसे जो बात हुई, तुमसे जो मुलाकात हुई, उस पर तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ। हाँ उसकी मुलाकात पर तुलसी के छम, गालिब की शहर, गालिब की शहर समेट सकता हूँ। बहुत ही खूबसूरत गीत, अगर आप इसे समझे तो लाजवाब बेमिसाल नगमा मनोज कुमार जी ने लिखकर गवाया है भूपिंदर सिंह जी। खूबसूरत आवाज फ्रॉम द मूवी क्लर्क, हमने नगमा को निकाले हैं। एक आदमी चाहे जो भी हो, अगर वो आपकी खुशी के लिए अपना हार मान ले, आप उससे कभी नहीं जीत सकते। जो आपकी खुशी के लिए अपना हार मान ले, आप उसे कभी जीत नहीं सकते। चाहत है नदिया, चाहत है सागर, चाहत ये धरती, चाहत वो अंबर, चाहत है राधा और चाहत है गिरधर। दिल का धड़कना बस यही चाहत है, और नींद ना आना यही चाहत है। खूबसूरत गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। द ग्रेट निदा फासली जी का लिखा हुआ एक एक अल्फाज, विनोद राठौड़ और अलका याग्निक मिलकर गाएंगे। हीरो निवाड़

चाहत नदियां, चाहत सागर, चाहत धरती और चाहत अंबर, चाहत राधा, चाहत गिरिधर, दिल का धड़कना बस यही चाहत है, और नींद ना आना यही चाहत है। ये चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होती, मैं भी ना होता। क्या नगमा, निदा फाजली जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग जो मिलकर गाए हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक अपनी खूबसूरत आवाजों में। चाहत फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनो वालों, रिमेंबर दिस इज यू आर, और दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। लगभग कुछ आधे घंटे और मेरा और आपका साथ रहेंगे प्रोग्राम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से जो बनाया जा रहा है आज रात्रि में 10 बजे तक। मरखड़ी जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, टंकी वाला आप के ऐप के लिए। हिरवाल्डो भी सुन रहे होंगे। मैं एक नगमा तैयार करके रखा है लता जी, संगीत की देवी लता जी की आवाज, संतोष आनंद का लिखा हुआ नगमा, एक प्यार भरा नगमा पेश करने जा रहा हूं कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही मुझे देखो रोशनी है। लता जी, संगीत की देवी लता जी की आवाज़।

तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही मुझे देखो रोशनी है। संगीत की देवी लता जी की आवाज, संतोष आनंद, द ग्रेट संतोष आनंद जी का लिखा हुआ गीत आप सभी ने सुने हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम प्यासा सावन। मैं तो यही कहूंगा मेरे प्यारे सुनने वालों, हंसो जियो मुस्कुराओ, और वो भी आज, क्योंकि क्या पता है कल होना हो। Geniet elk moment van de dag. Want we hebben allemaal morgen nog niet gezien. Kal hona ho. Kamla ji uit Amstelveen, dankjewel aapke aapke li. Behet khushi hai hum ki aap chun kiye hue hai. Ujala radio par aur sun rahe hai program Dil ki awaaz. Enjoy. मेरे प्यारे सुनो लो, जावेद अली जी को हम पेश करेंगे प्रोग्राम में समीर का लिखा हुआ एक पॉपुलर सॉन्ग, कि एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, और वो भी पनाहों में आऊंगा और खो जाऊंगा एक दिन एक दिन तेरा मैं बन जाऊंगा। पेश करता हूं नगमा, हियर ऑन यू आर वारिस तारिस जावेद अली।

या एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊंगा और खो जाऊंगा। जावेद अली जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं, फिल्म का नाम नकाब। मेरे प्यारे सुनने वालों, इस गीत के बाद हम आपको ले चलेंगे एक नगमा की ओर, मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में जो हम पेश करने जाएंगे। एक नगमा योगेश गौर जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग और एक भुला हुआ हीरा है ये नगमा। होश के साहिल पे मुझको अपनाने दीजिए, आज तो बस मस्तियों में, आज तो बस मस्तियों में डूब जाने दे मुझे। रफी साहब, द लेजेंड, पटना श्री रफी साहब जी।

इन्होंने गाकर सुनाए हैं फिल्म का नाम एहसान आपका। मेरे प्यारे सुन वालों, बेताबियां समेत कर सारी जहां की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। हमारे प्रिय श्री सुनील दत्त साहब जी वे बैक एक शो यहां देने आए थे और उन्हें ने ये शेर कहा था, तब से सुना आज नहीं भूला। बेताबियां समेत कर सारी जहां की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा ये दिल बना लिया। अगले गीत निदा फाजली जी का लिखा हुआ, मेरे प्यारे सुनने वालों, नितिन मुकेश और संगीत की देवी लता जी की आवाजें, हियर ऑन योर। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों, होश के साहिल पे मुझको अपना आने दीजिए। द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, योगेश जी का लिखा हुआ गीत।

तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है, सितारे जैसा हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। संगीत की देवी लता जी और नितेन मुकेश जी की आवाजें, निदा फासली जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत फिल्म नाखुदा से हमने निकाले हैं। मेरे प्यारे सुनो, आप सुन रहे हैं धुन दिल की आवाज। ये धुन से हम आराम करते हैं और जब भी दोहराता हूं तो मतलब ये कि आखिरी गीत पेश करेंगे और उस आखिरी गीत के बाद हम यहां स्टूडियो से रुखसत होंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से आज प्रोग्राम हमने उजाला रेडियो पर सजाए हैं, बनाए हैं, बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ, लगन के साथ, आप सभी ने भरपूर भी सुनते वक्त एंजॉय की है। आने वाले शनिवार प्रोग्राम नहीं सजाया जाएगा सैटरडे नाइट फीवर, तो मतलब ये कि आप सभी से फिर हम मिलेंगे कोमंड वुंसदाग आने वाले बुधवार 15 तारीख जुलाई को, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और ये प्रोग्राम दिल की आवाज 16 तारीख को भी हम पेश जो करेंगे हियर ऑन यू आर। आखिरी गीत मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ किशोर कुमार की आवाज फ्रॉम द मूवी दौलत का दुश्मन। राह फूल तो फिर खिलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल।